0: मी मरियम रिफ्का रशीद रिफ्का गैड दिवेही एफएम
1: दिवेही एफएम
0: दिवेही नाइक दिवेही नाइक
2: नोदी एक मेगाहर्ट्ज दिवेही एफएम
3: लवे कफ़ा हो
4: लवे

0: Ladies and gentlemen, the game is over.
1: ए मावे सुट्टा दाफिंग
2: आहार में सुट्टा दाफिंग
3: ए लिस्ट को मावे सीमना ला
4: अमिल्ल फैसा आंदा गें अमिल्ल हाशिंगड़ा गेल्लुं दिरुमा की किहा मोय कमे ए में मावे सुट्टा दाफिंग
5: दुम फाई आहार में गे हाथुरे दुम फतु के इस्तेमाल कुरुम के साबुन दिमावा सिही मसल तोगा आहार को हैं मिलियन वुरे किना मीहु मरुआ कमा ताफास हिसाब तकुन दक्का फस नुजे ही अवह दुम्फतु के इस्तियो माल कुरूं हुट्टा लमा हिंगा।
6: एको बात का ऐच्छे, आदा लास्वेज्जे।
7: आ, आदा लास्वेज्जे, फू ही महेंगी ना। हिंगा बदिवे हेफे मंगने निकोन शोए तो पला लो।
8: लंच ब्रेक।
9: ಹೊನಿ ರುಫಿಯವಾ ಕೊಮ್ಮೆ ದುವಹೆಗೆ ಮೆಂದರು ಏಕೆ ಜಹಾಯಿರು
10: ನುವದಿ ಹೇಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ಎಂ
11: ಮಿಲಮ್ ಹಲತಿಫ್ ಲಂ

0: अच्छा बेटा सेल्फी ले ले रहे दो ए अलावा ओके वारा बराबर देंग इस वाल की कुड़ कुछ जाए मीट खा ही तो मुनुनी मा इमो रेस्टोरेंट टाइप का फाहुंगे दे दो एतनो गाने लावे की कोबा
1: कुकुलुकु किया लावे
0: आ वारा रंग
2: मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी

0: नहीं सकते।
1: अच्छा एक काम करते हैं कि शहरों के नाम लेते हैं, और अगर तेरा घर वहां पर हुआ तो तू हाथ उठा लेना। मेरठ, फरीदाबाद, ग्वालियर, झांसी, पटियाला, अमृतसर, जोधपुर, जयपुर, श्रीनगर। हम हैं पवन कुमार चतुर्वेदी, पर प्रेम से सब बजरंगी बुलाते हैं। जय श्री राम। बहन जी,
2: बहन जी,

0: वो क्यों नहीं लगा इसे अपने घर?
1: मुरादाबाद
2: झुमरी तलैया
1: आसनसोल पाकिस्तान।
0: इसे अपने देश वापस भेजने का प्रबंध करो तुरंत।
3: चलिए हटे, आप बिना पासपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता।
4: अरे कैसे नहीं हो सकता कुछ, हम कह रहे हैं पाकिस्तानी, घर भेजिए इसे।
5: सिक्योरिटी, हम पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं बनाते, लोग यहाँ अमेरिका का पासपोर्ट बनवाने, इंग्लैंड जर्मनी जापान का।
6: अरे अगर मम्मी पाकिस्तान की है तो जर्मनी जाके क्या करेगी?
7: सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल पीरा।
8: हिंदुस्तानी जासूस को कड़ी सिक्योरिटी में रखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि उसको यहाँ से सीधा इस्लामाबाद शिफ्ट किया जाएगा। तू किधर शिफ्ट हो रहा है यार,
9: वो देखो।
10: जनाब बिल्कुल मेंटल है ये।
11: जय श्री राम।
7: हमारे पास पासपोर्ट नहीं है ना वीजा, लेकिन वादा करते हैं कि अब तो हम मुन्नी को खुद उसके घर छोड़कर ही आएंगे।
12: ऐसे है भैया बजरंगी,
13: मूवी मोड। मूवी मोड।